0: का साथ व्यापार व्यवसाय करना, आर्थिक जोखिम कम करना, विश्वास हामीलाई गर्नुस्। यूनाइटेड अजोर इंश्योरेंस, यूनाइटेड बाय ट्रस्ट।
1: रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ।
1: बर्जर पेंस।

0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैँ भरिलाई।
1: रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज।

0: का साथ व्यापार व्यवसाय करना, आर्थिक जोखिम कम करना, विश्वास हामीलाई गर्नुस्। यूनाइटेड अजोर इंश्योरेंस, यूनाइटेड बाय ट्रस्ट।
1: स्वस्थ जीवन को शुरुआत ओम हॉस्पिटल को साथ हाम्रो बेसिक हेल्थ चेकअप बाट तपाईको स्वास्थ्य स्थिति थाहा पाउनुहोस् वा हार्ट चेकअप गरी आफ्नो मुटुलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईका लागि एडवान्स हेल्थ चेकअप, सिनियर सिटिजन चेकअप र वुमन हेल्थ चेकअप सेवाहरू पनि उपलब्ध छन्। पहिले आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस्।
2: हाम्रो कम्प्रिहेन्सिभ डायबेटिक हेल्थ चेकअप, एक्जिक्युटिभ हेल्थ चेकअप र स्टुडेन्ट तथा इम्प्लोइमेन्ट हेल्थ चेकअप प्याकेज मार्फत हामी तपाईको पूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्छौँ। आजै ओम हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर में आएर स्वास्थ्य परीक्षण गरी ढुक्क हुनुहोस्। थप जानकारी तथा बुकिंग का लागि ओम वेलनेस क्लिनिक को फोन नंबर 4576-275 वा मोबाइल नंबर 9800-76-247 में संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ओम हॉस्पिटल, वी केयर फॉर यू।

0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैँ भरिलाई।
1: रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज।